がりかな。いへらまへらまへらまい。माचा पांडव भाई और के भाए भने देखी उतापटी परमात्मा 36 वर्ष पछाड़ी राज्य उनीले 36 वर्ष पछाड़ी यादवहरू जो दीप प्रकाश पाले सारा छिए भए प्रभास तिरामा देखे जसै कृष्णले दिक्माने मनमा कुल छिए भयो जानु पर्यो लौ भनी सुरहारण वै भविष्य पनि भयो दाजै बलराम पनि नारायण।

सुनी वसुदेव दे पदी पानी दे हंता हुदा भये। यो सुनी करत दी वशिष्ठा गुरु यो वाता वंदा भये। नारायण।

0: Media Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: lip on ya. Extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

रे सिरवी में सोलाय अथे तारा पाती बाई ते सोलाय तेरे सोलो अलगटी तमारे रामा रामा बाई ते सोलाय तेरे सोलो शिशा को गोलिया मा तिम्रा बोली का गोए रा बेरे सोला

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैंड में थोपलो सात मेगाहर्ट्ज़ मो बजे प्रसाद साहब को आज विक्रम संवत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन 2026 जून 22 तारीख आषाढ़ 8 गते सोमवार अष्टमी तिथि अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो साक्षेण कल्पय भरी श्रीमा दशरथ जी का शरीर प्रख्याति नई लग भरे शत्रु राघव का शरी क्षय राजा नोष काय सरे दौलतले परिपूर्ण होस पवन जय नई परे का घरे मंडा खुन सबले दुर्योधन समा

नलकुंज के साथ हाथ पर जाओ ध्वज बिराजई कांधे मुझे जने साजई शंकर सुबन केसर नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर पर्व चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दरी से दिखवाया विकट रूप बदल लंगाधर आया हेम रूप दरी असुर संहारी रामचंद्र की काज संहारी लाए सजीवन लखन जी आये श्री रघुवीर हरसिउर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहज बदन तुम्हारा जस गावे अश्क श्रीपति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा नारद सारद सहित ऐसा हेम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि गोविंद कैसे के कहते तुम उपकार सुग्रीव किना राम मिलाए राजपद दिना तुम्हारो मंत्र भी विषण मान लंकेश्वर भय सब जगदान युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताई मधु फल जानु प्रभु मुंद्री का मेली मुखमाई जल्दी लागी गए अतर्जन आई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम द्वारे तुम रखवारे वतन आज्ञा बिना पैसारे सब सुखलाई तुम्हारी शरणा तुम रक्षे काउ को डरना आपन तेज समारोह आपे तिनोलोक हागते कापे भूत पिता से निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हर सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कमर वचन ध्यान जलावे सब पर राम तब श्री राजा तिनके काज सकल तुम साजा अवरो मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग प्रताप तुम्हारा है परसी जगदेव जी आरा साधु संत के तुम रखवारी असुर निकंदन राम दुलारी अष्ट सिद्धि नमनिधि के दाता अस्वर दिन जान की माता राम रसायन तुम्हारी पासा सदावर रघुपति दासा तुम्हारी भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिश्रावे अंत काल रघुबरपुर जायी जहाँ जन्म हरि भक्त खाई और देवता चिदन धरई हनुमत से सर्व सु करई संकट कटई मिर सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बलबीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा कर हूँ गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छुटी बंदी माँ सुख हुई जो ये पड़े हनुमान चाइसा हो सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सनाहरी चेरा किजनाथ हृदय मोहडेरा ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसवंश रूप सियावर रामचंद्र शंकर जी बाजा जय हनुमान जय बजरंगबली।